0: Listen to Anita, Radio and RM 99.1, Sapeka Lagi Sutana.
1: नेपाली रेडियो नेटवर्क रेडियो एनआरएम 99.1 मा यो म्युजिक मस्ती

एलजीले ल्यायो नयाँ एलजी एसेन्सियल सिरिज, अब किफायती मूल्यमा रेफ्रिजरेटर, वासिङ मसिन, एसी को कम्प्लिट रेन्ज, 10 वर्षको वारेन्टी सहित 0% नो कस्ट इएमआई। नागरिकता भए पुग्छ, हरेक घरको खुसी, घर घरमा एलजी। एलजी लाइफ गुड।

0: रेडियो साइमन 89.8 मेगाहर्ट्ज
1: साहिनो समय सूचक अहिले रातिको 9 बज्यो 8:09 PM।